एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026 सवेरे के 8:56 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8:59 हुए हैं। शुभ विचार में आज प्रस्तुत है वीर सावरकर की विचार। वे कहते हैं, संघर्ष की तपती धारा से बचने के लिए हम शीतल व आसान मार्ग चुनते हैं और बस यही हमें पतन के मार्ग तक पहुंचाती है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू।

0: रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
2: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए

0: हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में AI तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में CBI ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया। अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाश

आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लवयापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

0: आंखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के।
1: कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देवनेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

0: फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तीनों कॉलेज में

0: पटवारी।
1: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
0: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: डायरेक्टर ने आओ देख लो ना, ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
7: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

हाँ, हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूं या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूं, ये आपको बताने आया हूं। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

मनहर उदास जानी मानी गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

कहानी के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। यह वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

शुरुआत में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

0: संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं।
1: हम तो

0: दोस्तों हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मनहर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए। और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये

0: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, विषय है नेकी की राह।
1: सबको अपना समझते हुए, उनके सुख दुख में हाथ बटाते हुए तथा तन मन और धन से औरों की सहायता करते हुए लोग अपना ही भला करते हैं, अपने आप को विस्तीर्ण करते हैं, फैलाते हैं, सीमा से उन्मुक्त होकर अनंतता की ओर, असीमत्व की ओर पदार्पण करते हैं। सर्वात्म भावपूर्वक सुखों के उपभोग में वो आनंद आता है जिसका शतांश भी अकेले भोग करने में नहीं आता। बेटे से बाप का दर्जा भी इसलिए बड़ा है कि वह अपनी तृप्ति अपने बेटे की तृप्ति में मानता है। इस आत्मभाव का नैतिक सद्गुणों के रूप में जितना अधिक विकास होता है, उतना ही आत्मा पुलकित और प्रफुल्लित होती है। फल आसक्ति अहंता ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना ही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग, इन सब साधनों का प्रधान उद्देश्य ये है कि किसी का परम हित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब लोग स्वार्थ और अभिमान से रहित होकर संपूर्ण प्राणियों के साथ त्याग, समता, सहिष्णुता, उदारता, प्रेम और विनयपूर्वक व्यवहार करें। उत्तम आचरण और अंतःकरण के उत्तम भावों से ही मनुष्यता विकसित होती है। ये न हो तो फिर मनुष्य और शैतान में अंतर ही क्या रह जाता है। सत्याग्रह और सदाचरण आत्मा के दो बेटे हैं। इन्हें मारकर कोई भी व्यक्ति आत्मनिष्ठा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। हनन की हुई आत्मा ही अनीति की ओर प्रेरित करती है और दुष्कर्म कराती है। असत्य कर्म करते रहने से धीरे धीरे आत्मा मूर्छित हो जाती है, तब फिर उसमें अधर्म का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रहती। पाप का फल भोगे बिना कोई मनुष्य बच नहीं सकता। गीता का अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम सिद्धांत अटल है। मनुष्य दुष्कर्मों का परिणाम भोगे बिना बच नहीं सकता। आग में उंगली देने वाला जले नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। प्राकृतिक नियम अमिट है। गलती करने वालों को दंड मिलना स्वाभाविक भी है। अतः मनुष्य की समझदारी इसमें है कि सत्यता और ईमानदारी का ही बर्ताव अंत तक करता रहे। ईमानदारी की रूखी रोटियां बेईमानी के पकवानों से अधिक स्वादिष्ट होती हैं, क्योंकि उनमें निर्भयता, निश्चलता और आत्मा का तेज समाविष्ट होता है। यदि किसी ने भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, उसके लिए हर उचित अनुचित साधन अपनाने को आतुर रहता है, तो उसकी भी कुछ हद होती है। अनियंत्रित भोग की कामना से भोग भोगने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इंद्रियां निर्बल और निस्तेज हो जाती है। मन बेकाबू हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाता है। शरीर और मन के अनेकों विकार उठ खड़े होते हैं और अनेकों आपत्तियां घेर कर खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं, पहले मनुष्य भोग भोगता है, बाद में भोग मनुष्य को भोगते हैं। अर्थात मनुष्य केवल इच्छाओं और वासनाओं का दास होकर रह जाता है और इस तरह से अकाल ही काल के गाल में चले जाने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। मनुष्य सत्य पथ का, प्रकाश पथ का यात्री है। झूठ और मिथ्याचार के आकर्षण में फंसकर उसे अपने जीवनोद्देश्य से क्यों पतित होना चाहिए। अधर्म से धन जमा करने की अपेक्षा यही अच्छा है कि मनुष्य सत्य आचरण करता हुआ गरीब बना रहे। जो साधन अधर्म पूर्वक प्राप्त किए हैं, वे मनुष्य को अंततः रुलाए बिना नहीं छोड़ते। जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, एक नीति का रास्ता, दूसरा अनीति का। एक नेकी का और दूसरा बदी का। एक का नाम श्रेय है, दूसरे का प्रेय। श्रेय पर चलने वाले सीधी सड़क पर चलते हुए जीवन के सात्विक सुखों का उपभोग करते हुए सुविधापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये मार्ग सर्व कामना सिद्ध है। दूसरा है इंद्रियों को जो भाए, जिधर चलाए उधर चलने वाला मार्ग। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा मनुष्य अंत में कष्ट और कठिनाइयों के बीहड़ वन में भटक कर तरह तरह के क्लेश पाता है। उसके लिए ये मनुष्य जीवन भार की तरह हो जाता है। ये स्थिति अवांछनीय है। हम वो राह क्यों चलें जिसमें कष्ट हो, कांटे बिछे हुए हों। नेकी की राह एक ऐसा राजमार्ग है जिस पर चलकर परमात्मा का राजकुमार मनुष्य हंसते खेलते मौज लेते हुए जिंदगी का रास्ता तय कर लेता है और पूर्ण सुख, चिर विश्राम की शांतिदायिनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है।
0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम चिंतन, विषय था नेकी की राह। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे की 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। 102.9 मेरा चैनल आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ और मैं हूं दीपक, प्रोग्राम लेकर के आपका अपना भूली हुई यादें। इस प्रोग्राम में हम गुजरे जमाने की फिल्मों पर बातें करते हैं। 1964 का सफर हमने शुरू किया था, कुछ फिल्मों पर बातें हो गई, कुछ फिल्में भी बाकी है जिन पर हमें बातें करनी है। तो आज जहन में 1964 की जो फिल्म सबसे पहले आ रही है, ये फिल्म है पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, साधना और प्राण की एक सुपरहिट फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया के शंकर ने, और ये फिल्म राजकुमार।
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। रामानंद सागर ने इस फिल्म की कहानी को लिखा। पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, साधना, प्राण, ओम प्रकाश, राजेंद्र नाथ, अचला सचदेव, टुनटुन, मनोरमा जैसे कलाकार इस फिल्म में थे। इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया था और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए।

इस फिल्म के गाने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने मिलकर के लिखे। आवाज रही मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और लता मंगेशकर की।

इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले शक्ति सामंत, उन्होंने ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। इस फिल्म की कहानी राजन बोस और रमेश पंत ने मिलकर के लिखी।

ये एक रोमांटिक टाइप की फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, धूमल, नाजर हुसैन, अनूप कपूर जैसे कलाकार थे।

कश्मीर की कली फिल्म इससे पहले तेलुगु में बनी श्रृंगारा रामोड्यू के नाम से, बाद में ये हिंदी में बनी कश्मीर की कली फिल्म के नाम से।

इस फिल्म के गाने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे, जो कि बड़े पसंद किए गए, बड़े हिट हुए इस फिल्म के गाने, यानी कि कश्मीर की कली।

चलिए 1964 का सफर और आगे बढ़ाते हैं और अब हम जिस फिल्म पर बात करें, यह फिल्म थी साधना और मनोज कुमार की। फिल्म का नाम वो कौन थी।

वो कौन थी? इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले एन सिप्पी और एम ए मधु राज खोसला ने इस फिल्म का निर्देशन किया। ध्रुव चटर्जी ने इस फिल्म की कहानी को मनोज कुमार के साथ मिलकर के लिखा।

इस फिल्म का संगीत जो है बड़ा प्यारा रहा, और संगीत देने वाले मदन मोहन, गाने लिखे राजा मेहदी अली खान ने।

साधना और मनोज कुमार के अलावा हेलन, प्रेम चोपड़ा, के एन सिंह, मोहन चोटी, धूमल जैसे कलाकार इस फिल्म में थे।

इस फिल्म के गाने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के आवाज में रिकॉर्ड किए गए। एक गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में भी था।

फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए भी पुरस्कार मिला के एच कपाड़िया को। नॉमिनेट हुई ये फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में साधना और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में मदन मोहन।

तो ये फिल्म थी वॉक ऑन थी। तो 1964 का सफर चल रहा है और तीन और फिल्मों पर आज हमने बातें की। अगली बार कुछ और फिल्में और ये सफर यूं ही जारी रहेगा, भूली हुई यादें इस प्रोग्राम में। अब दीजिए आज के लिए इजाजत, दीपक मेहता को नमस्कार।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूली हुई यादें। प्रस्तुति थी दीपक मेहता की। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
4: अपनी कमियों से आत्मविश्वास ना खोएं। कमियां हैं तो क्या हुआ, हर इंसान अधूरा है। जो गिरकर फिर उठ जाए वही सबसे मजबूत और पूरा है। ठोकर से मत डरना तुम, रास्ते खुद बन जाएंगे। हौसलों की लौ जलाओ, अंधेरे भी मिट जाएंगे। जो अपनी कमी को पहचान ले वही खुद को संवारता है। हार नहीं जो मानता वही जीवन निखारता है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम खुद पर विश्वास रखो। मेहनत की सीढ़ी चढ़ते जाओ, दिल में नया प्रकाश रखो। कमियां तो बस आईना है जो बेहतर बनाना सिखाती है। आत्मविश्वास कभी ना खोना, यही जीत की राह दिखाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ करती हूँ आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का स्वागत हमारी आज की इस कार्यक्रम महिला जगत में। सभी सुनने वालों को मेरा यानी मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। कई बार सखियों, हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं या कमियों को देखकर निराश हो जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन सखियों, सच्चाई ये है कि कमियां हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनने के लिए, प्रेरित करने के लिए होती है। सखियों, आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपनी कमियों से डर जाते हैं तो हम आगे बढ़ने के अवसर खो देते हैं। इसीलिए सखियों, जरूरी है कि हम अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इतिहास में ऐसे अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। सखियों, किसी के पास धन नहीं था, किसी के पास शिक्षा की कमी थी, तो किसी को समाज ने कमजोर समझा। फिर भी सखियों, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करके सफलता प्राप्त की। कमियों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका सखियों क्या है पता है? खुद की तुलना दूसरों से ना करना, अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान देना, लगातार सीखते रहना और सकारात्मक सोच बनाए रखना। सखियों, जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तब वही कमियां

की तुलना दूसरों से ना करना, अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान देना, लगातार सीखते रहना और सकारात्मक सोच बनाए रखना। सखियो, जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तब वही कमियां हमारे अनुभव और ताकत बन जाती है। असफलता भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसीलिए गिरने से डरना नहीं चाहिए बल्कि हर बार उठकर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में सखियो ये कहना उचित होगा कि व्यक्ति की पहचान उसकी कमियों से नहीं बल्कि उनसे लड़ने की हिम्मत से होती है, इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरियों के कारण आत्मविश्वास न खोएं, उन्हें सुधारने का प्रयास करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।

सखियों, अब हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी मीडिया समूह की पूर्व चेयरपर्सन और एक प्रसिद्ध समाज सेवी इंदु जैन के बारे में। सखियों ने मीडिया जगत की दिग्गज कला और संरक्षक और महिला सशक्तिकरण की समर्थक के रूप में जाना जाता है। सखियों का जन्म 8 सितंबर 1936 को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद में एक साहू जैन परिवार में हुआ था। इनका विवाह भारत की सबसे बड़ी मीडिया समूह के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय अशोक कुमार जैन से हुआ था। सखियों के दो बेटे हैं समीर जैन और विनीत जैन, जो वर्तमान में इनका कार्यभार संभाल रहे हैं। इंदु जैन के नेतृत्व में इनकी कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। साथ ही सखियों, इन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की थी जो बाढ़, भूकंप और महामारी जैसी आपदाओं के समय लोगों की मदद करता है। इंदु जैन महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक भी थी और उन्होंने फिक्की की महिला शाखा की स्थापना की थी। ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की अध्यक्ष भी रही, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है। भारत सरकार ने साल 2016 में इन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इंदु जैन का निधन सखियों 13 मई यानी आज

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
4: सखियों, आज के समय में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि सखियों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो हम अपने परिवार में, समाज में और कार्य क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकते हैं। लेकिन कई बार सखियों बीमारियां धीरे धीरे शरीर में विकसित होती रहती है और प्रारंभिक अवस्था में उनके कोई स्पष्ट लक्षण भी दिखाई नहीं देते। सखियों, ऐसी स्थिति में समय पर की गई स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जाँच जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सखियों, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी के लक्षण प्रकट होने से पहले उसकी जांच करना, ताकि बीमारी का पता शुरुआती चरण में लगाया जा सके। जैसे कि ब्लड प्रेशर जांच, शुगर टेस्ट, कैंसर की जांच, आंखों और दांतों की जांच, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच। सखियों, समय पर जांच इसलिए जरूरी है कि इससे बीमारी का जल्दी पता चलता है और कई गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि शुरुआत

थकने बिना लक्षण के होती है। समय पर जांच से इनका जल्दी पता लग जाता है और इलाज आसान हो जाता है। सिक्यों साथ ही यदि बीमारी प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज कम खर्चीला और अधिक प्रभावी भी होता है। देर होने पर इलाज कठिन और महंगा हो सकता है। समय पर स्क्रीनिंग कई बार व्यक्ति की जान बचा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होती है। सखियों एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए उपयोगी होता है। बीमारी बढ़ने पर परिवार को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सखियों नियमित जांच से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है और सही खान पान व्यायाम तथा स्वच्छता पर भी ध्यान देता है। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, मधुमेह या हृदय रोग के मरीजों को और जिनके परिवार में गंभीर बीमारियों का इतिहास हो, ऐसे लोगों को नियमित जांच करवानी ही चाहिए। सखियों समय पर स्क्रीनिंग और जांच स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यह केवल बीमारी का पता लगाने का माध्यम नहीं बल्कि बेहतर और सुरक्षित भविष्य की तैयारी भी है। इसीलिए सखियों प्रत्येक व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सावधानी ही सुरक्षा है, यह बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह लागू होती है।

मजेदार हमसे जुड़कर साझा कीजिए अपने दिल की बात आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के साथ। आपके दिल में छुपी हो कोई बात, जहन में हो ऐसी कोई याद या हो कोई जज्बात, तो आप हमें साझा करें फेसबुक पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के पेज पर। यदि आप इंस्टाग्राम पर साझा करना चाहते हैं तो सर्च करिए AIR चित्तौड़गढ़, या फिर आप हमें सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो है 01472240200। बस आपकी ऐसी ही यादों, बातों और जज्बातों को समेटे एक खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, कुछ बातें कुछ गीत, तो साझा करें अपनी बात सीधे आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के साथ। और सुनिए प्रत्येक सोमवार शाम 7:30 बजे आपके अपने FM मीरा पर। सखियों, आज के समय में बैंकिंग हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पैसे जमा करना हो, निकालना हो, ऑनलाइन भुगतान करना हो या किसी को राशि भेजना हो, ये सभी काम बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से आसान हो गए हैं। लेकिन सखियों, केवल बैंक खाता होना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उससे जुड़ी सुविधाओं जैसे कि पासबुक, चेकबुक और ATM को भी समय समय पर अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है। सखियों, पासबुक बैंक खाते का लिखित रिकॉर्ड होती है, इसमें जमा, निकासी, ब्याज और अन्य लेन देन की भी पूरी जानकारी रहती है। सखियों, पासबुक को अपडेट रखने के कई फायदे हमें होते हैं। इससे खाते की सही जानकारी मिलती रहती है, किसी भी गलत ट्रांजैक्शन का पता भी जल्दी चल जाता है, सरकारी योजनाओं या फिर सब्सिडी की राशि आई या नहीं यह भी पता चलता है। और सखियों, बैंक से लोन या अन्य कार्यों में पासबुक बहुत उपयोगी होती है। आजकल कई बैंक पासबुक प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी देते हैं, जिससे जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। सखियों, चेकबुक को भी समय पर अपडेट और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। चेकबुक का उपयोग आज भी कई महत्वपूर्ण भुगतानों में किया जाता है। यदि चेकबुक आपकी पुरानी हो जाए, पन्ने समाप्त हो जाए या फिर हस्ताक्षर मेल न खाए तो भुगतान में परेशानी हो सकती है। तो सखियों, चेकबुक खत्म होने से पहले ही नई चेकबुक के लिए आवेदन कर दें। हस्ताक्षर हमेशा बैंक रिकॉर्ड के अनुसार करें। खाली चेक किसी को न दें और इस्तेमाल किए गए चेक का रिकॉर्ड भी रखें। सखियों, ATM कार्ड आज नकदी निकालने के साथ साथ ऑनलाइन भुगतान और खरीदारी में भी उपयोग होता है, इसीलिए इसका अपडेट और सुरक्षा दोनों जरूरी है। मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक रखें, कार्ड की एक्सपायरी डेट पर नया कार्ड समय पर लें। ATM पिन किसी के साथ साझा न करें, समय समय पर पिन को बदलते रहें। यदि कार्ड आपका खो जाए तो तुरंत बैंक को सूचना दें। सखियों, बैंक की पासबुक, चेकबुक और ATM को अपडेट रखना केवल सुविधा नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जागरूक ग्राहक ही सुरक्षित बैंकिंग कर सकता है, इसीलिए समय समय पर बैंकिंग दस्तावेज और सुविधाओं की जांच करते रहें और सुरक्षित बैंकिंग की आदत अपनाएं।

सखियों, इस गीत के साथ ही हमारा भी अब कार्यक्रम से अनुमति लेने का समय हो चला है। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति अपनी रेडियो सखी मीनाक्षी को। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। सवेरे के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

0: जिस राह पे जाना
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमानी का संगीत था सोजे दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है, और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही की ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाली यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहरदास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को। उनके जन्मदिन के मौके पर सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से, मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनन उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम, और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में है। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत, मनोहर दास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जाबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मनुरदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

0: गाथा
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन मनोहर दास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनोहर दास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का नीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादुती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:05

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान

0: होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी।
5: अब नहीं, तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी होगा।
4: चलो चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बहुत ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा,
4: आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
1: ऐसा मौसम,
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी
0: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
0: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
0: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
0: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
0: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
0: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
0: स्वाद है,
2: पसंद है,
0: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
0: कौन सा फल?
3: नहीं समझी?
0: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आम।
2: आम। तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
2: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा, लो। गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का

0: प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
1: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
2: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
3: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
4: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
2: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुका! जाओ वहीं रुक जाओ। रुका!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो

0: क्या कहना चाहते हो?
1: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
1: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
1: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
1: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
1: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
1: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
0: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
0: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
0: जी सर। उधर

0: जी,
1: तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
0: जी सर,
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
0: जी सर,
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
0: जी सर,
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
0: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर,
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर,
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर, जी सर,
1: कोई शक?
0: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
0: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
3: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
3: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर,
3: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी,
3: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
3: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर,
3: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
3: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे,
0: धीरे, धीरे।
3: बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे।
3: जी सर। कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
0: हाँ सर।
3: एवरीबॉडी रेडी?
0: यस सर।
3: यस सर। अब हथगोला फेंको।
1: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत,

0: विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रही थी NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 MHz पर। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है, अभी 2 दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किनकी आवाजें हैं इस गीत में।

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने

सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए, हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई।

ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था? फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

0: मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे, उसके तुरंत पश्चात हिंदी में, जिन्हें हमारी आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला

0: मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर

0: दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार

0: दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। FM बैंड 102.9 MHz पर दोपहर के 2:30 बजे लीजिए, अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हाल चाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर। और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा,
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
0: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
1: दें। बता देते, देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
1: और
0: है।
1: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना।
0: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, इतने सुंदर सुंदर
1: आप मेंटेन है ना
0: ये वही तो बात है,
1: इसलिए हमें संतुलन रखना है ना,
0: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
0: जी तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो सुनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि

0: आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
0: कितनी
1: वो
0: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र है और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम या सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, और एक दो महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली हमारी एक

0: ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ।
0: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण
0: है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते
1: काम
0: थे।
1: कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, घर में चक्की भी चलना है तो गेहूं भी पछोड़ना है,
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना
1: कुएं से
0: है,
1: पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते
0: काम
1: थे।
0: थे। तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी कि में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम तेरा
1: मंजरी
0: गिरे इस गाने है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो
1: हाँ
0: हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी
1: भाई
0: पायल
1: मैं
0: बजने
1: देख
0: लगती
1: रही
0: है। तो
1: थी।
0: देखो मैं एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना।
1: लेते हैं एक
0: अंतराल,
1: ब्रेक।

0: जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: बात है, बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्य हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी। ऐसा लग रहा
0: है खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपुरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। कि ऐसा है? नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे, उनको हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने

0: के लिए जीते हैं खाते हैं वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
0: लेकिन इसमें मजा आता है जिसको लगा मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: तो
1: वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक
0: दिन। बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है कि लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात
0: और है? ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए। हाँ।

0: खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
1: हाँ, यानी आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
0: बहुत
1: हैं,
0: सुंदर बताई।
1: और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं,
0: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
1: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
1: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी बनाते भी नहीं है वो
1: से
0: पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर ना

0: नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है,
1: सचमुच इंदौर बार बार जाने को जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
1: और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
1: और आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी।

0: उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे, जिनकी आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर हैं। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था, तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक एमसी के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक तो खैर कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित

0: करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, को एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उस तरह से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार से वो क्रेज था।

0: उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा, जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुन,
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे,
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं।

0: उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे और फिल्मों का तो खैर नौरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था।
1: जी ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
0: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
1: वाह
0: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
1: जी,
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: ये गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता था,
1: खुद गाते थे
0: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका।
0: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी,
0: एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी,
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना। तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से
1: जा चुके थे उस दौर में जब आप,
0: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी,
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ,
0: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे, मतलब उसमें नंदलाल शर्मा आपके नाम सुना,
1: बिल्कुल,
0: गणपतलाल डांगी,
1: हाँ,
0: इनका हवा महल में
1: आज भी हवा महल में उनके नाटक

0: ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा। उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है,
1: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
0: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे?
1: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो
0: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
1: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल
1: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
0: जी,
1: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
0: बिल्कुल
1: पंजाब का जयपुर था वो, वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
0: जी।
1: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
0: थी जी।
1: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
0: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
1: 1 साल
0: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
1: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
0: जी,
1: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
0: जी,
1: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब
0: बिल्कुल
1: मिश्रा साहब को मिला।
0: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
1: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
0: जी,
1: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे
0: सुबह तक, लोग सुनते थे और सबसे लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
1: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था
0: जी,
1: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आके डाल दी।
0: अरे,
1: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
0: मिला। बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
1: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दरदर
0: जी,
1: तरन्नुम में सुना उसको?
0: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
1: जिंदगी की बस्ती में

0: और ये नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लू ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारा संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठे
0: सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत मेरे पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो मैं नहीं सकता।
0: उसका जिक्र ना ही करें तो अच्छा।
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे
1: घर में वो पारिवारिक, उसके पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके पास।

0: आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। मतलब
1: हाँ
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था। तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूं जी।
1: क्या बात है। इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक
0: हाँ
1: था बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर,
1: ये जो
0: बिल्कुल
1: बचपन
0: बिल्कुल
1: के जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो मैं देखता से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब,
1: बैठता
0: गजब,
1: था।
0: अब ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो

0: मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
1: जी जी।
0: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे। बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना। तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात
0: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, कहानी ऐसी है कि पुराने समय में एक राजा अपने मंत्री से किसी बात पर बहुत नाराज हो गए। उसने मंत्री को फांसी चढ़ाने की सजा सुना दी। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ, आज शाम को मंत्री को फांसी पर लटकाना है, इसकी सूचना मंत्री को दे आओ। राजा के सैनिक मंत्री के घर पहुंचे और वहां सभी लोगों को राजा का आदेश सुनाया। ये सुनते ही सभी उदास हो गए, लेकिन मंत्री ने सभी को समझाया कि हमारे पास आज शाम तक का समय तो है ही, हमें हर एक पल उत्साह के साथ जीना है। मित्र और परिवार के सभी लोग निराश थे, लेकिन मंत्री की बात मानकर फिर से उत्साह मनाने लगे। ये बात सैनिकों ने राजा को जाकर बताई तो राजा आश्चर्य से भर गया। उसने तुरंत मंत्री को बुलवाया और उसके इस व्यवहार पर प्रश्न उठाया कि तुम पगला गए हो, मृत्यु का उत्सव मना रहे हो। मंत्री बोला, राजन, आपका धन्यवाद कि मुझे शाम तक का समय तो दिया। शाम तक मैं अपनों के साथ आखिरी पल तक खुलकर जीऊंगा। ये सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और बोला कि तुमने तो जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को एक नया चेहरा दे दिया, तुम आजाद हो। दोस्तों, जीवन के एक एक पल का मूल्य अपनों के साथ बिताई यादों में है। जीने जाने किस पल जीवन की आखिरी शाम हो।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक गीत वाहिदा रहमान जी पर फिल्माया गया, 1965 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म का, जिसकी शूटिंग की गई हमारे अपने चित्तौड़गढ़ के किले पर। फिल्म गाइड, लेखक महान साहित्यकार RK नारायण, जिन्हें इस कहानी के लिए, इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। RK नारायण, जिनकी रचनाएं भारतीय जीवन की सादगी, भावनाओं और मानवीय रिश्तों को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। इनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। वे भारतीय अंग्रेजी लेखन के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि पर लिख हमारी संस्कृति और जनजीवन को विश्व भर में पहचान दिलाई। प्रसिद्ध कृतियाँ जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड और मालगुड़ी डेज को विशेष रूप से लोकप्रियता मिली। श्रोताओं, RK नारायण ने ये साबित किया कि साधारण जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी साहित्य का अनमोल हिस्सा बन सकती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए साहित्य के प्रति प्रेम का बीज मन में रोपें, उन्हें याद करते हुए सुने फिल्म गाइड का वही यादगार गीत।

दोस्तों, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी का। उनका जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्र सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो देश की आज़ादी के संघर्षों में योगदान देने निकल पड़े। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। अपनी ईमानदारी, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा के कारण जनता के बीच बेहद सम्मानित रहे और वर्ष 1974 में भारत के राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास किया। श्रोताओं, श्री फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल पद पाने में नहीं, बल्कि ईमानदारी और सेवा भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में है। आइए, उनकी जयंती पर हम भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करने का संकल्प लें।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर।
2: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: देश हित की बात हो रही है तो दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये सपनों की उड़ान का एक माध्यम भी होती है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रभावशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का अवसर देना है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि पैसों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने। श्रोताओं, शिक्षा वो शक्ति है जो किसी भी समाज को दिशा और उसकी दशा बदल सकती है। जब एक छात्र को सही अवसर मिलता है तो वो न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का भविष्य उज्जवल बनाता है। आज जरूरत है कि विद्यार्थी इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखते हैं। तो आइए हम संकल्प लें कि शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचाएंगे और हर प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, क्योंकि कलम की ताकत ही एक बेहतर और मजबूत भारत का निर्माण करती है।

इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी, फिर मिलूंगी आपसे आपकी पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। आइए सबरस की शुरुआत करते हैं इस पहले नगमे के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

सोनू निगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे नगमा। आइए अब सुनवाते हैं आपको अगली रचना, जिसे स्वर से सजाया है पंकज उदास ने।

0: पंकज उदास की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। आइए सुनवाते हैं सबरस का अंतिम गीत, आवाज़ है कैलाश खैर की।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

और इसी के साथ सबरस होता है यहीं संपन्न। FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या है 186, गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झोटा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। भाग संख्या थी 186। गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से प्रसारित होने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी। थीम म्यूजिक पर आधारित फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक जनकार। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। ये थे हमारे चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से प्रसारित होने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न हुआ। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल। 6:27 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और उसके तुरंत बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी प्रसारित होगी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर,

0: हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। CBSE ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर

0: लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, AI और स्टार्टअप जैसे नवाचार को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8,00,000 रुपए में सौदा किया। SOG ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत तो ही है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किसाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना

के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और

0: विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की

0: तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया बहुल शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू 12 विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 12 में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 साखारा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइपलाइन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हलका माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 साखारा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो जावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसान

0: किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 आखारी खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,000 करोड़ रुपया रा खर्चू कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावा सारू खास योजना ने ही मंजूरी देनी।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनवाला मायो 85.20% पास फेक्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86%, जबकि लड़का रो नतीजो 82.13% रहो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माए लीरीजी परीक्षा माए 17,68,000 विद्यार्थी शामिल फिया, जा मायो 15,07,000 पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायो 86.78% पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां माए 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इस साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रहो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन्हें मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जबकि सेकंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माए फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माए हेराफेरी करण रा आरोप माए 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माए राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा ने बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वहां का न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8 लाख रुपया माए सौदा करण रेठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा हा। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपाण उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला री बजाय नौकरी देवन वाला बनवा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवानाओं तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माए 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा बारा माय राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पछे आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करती रीची है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावणो हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माए पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म हो जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत 5 जिला सारू 18 करोड़ रुपए बत्ता खर्च वाली परियोजनावां मंजूर कीनी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में राखी जी मीटिंग में दौसा चूरू डीडवाना कुचामन फलौदी और बालोतरा में आ काम सारू 10,76,00,000 रुपए जारी करी चिया। इन तहत दौसा और डीडवाना कुचामन में भाटा उद्योग चूरू में लकड़ियों बनिया सामान फलौदी में सोनामुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सारू नुआ सेंटर और लैब खोलिया जावेला। राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनावण और अपराधियां माथे काबू करण सारू पुलिस मुख्यालय रे ओरों 2 दिन रो नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। अभियान रा तहत 727 ठोणा गाड़ियां री जांच करी ची। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के जांच रे दौरान 7,000 बत्ता चालान करी चिया। प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 रे बारे में जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला में आई कलेक्टर SP सांसद और विधायक खुद डिजिटल जनगणना कीनी। शहर में न्यारी न्यारी ठोणा हमारी जनगणना हमारा अधिकार सरीखा नारा वाला पोस्टर लगार लोगों ने इन जुड़बारी सीख दी जा रही है। झुंझुनू में आई आज प्रगणका सारू खास शिविर लगाई चिया। अरब मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुणी और उगनी हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सबू गर्म रहो जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। जैसलमेर माए दिन री बगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो। बाड़मेर बीकानेर और चित्तौड़गढ़ माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और बीकानेर माए लू रा हालात रहा। राजधानी जयपुर माए लू सरीखा हालात विच कई ठोणा प्रशासन सड़का माथे पानी रो छिड़काव करवायो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नु लागोड़ी सरहद कने रा हलका माए काले जबरदस्त लू बाजण सारू चेतायो है। इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन विच राज्य रा उत्तराद उगनी हलका माए कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी। झुंझुनू जिला में मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद में खान पीन री चीजां रा नमूना मानक रे मुजब नहीं मिलिया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हूँ मार्च 2026 ताई जिला में खास अभियान राते लिया जे 837 नमूना मायू 223 ते मानका माथे खरा नहीं उतरिया। सलूम्बर्रा PMC राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपया। इस मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुविधा रो फायदो लेवन बाबत कहो। वे DFMT मधु टीन शेट लगावन रा काम री शुरुआती कीनी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सारू कीनी है। प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है। ई ऑनलाइन होड़ माए 20 मई तई भाग लियो जा सके है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला। ओ मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर में शुरू फैला। अंक तालिका में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं ठौड़ में थे।

0: है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूजा पायदान मथे है। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 साखाना सरकारी मूल में बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। सीबीएसई 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी। और प्रदेश रा तुणी और लंकाऊ उगनी हल्का में जबरदस्त गर्मी। फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती किसानी।
2: काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाया और बहना ने मारू रामू भाई की ओर गणा मानसू राम राम सा। किसान भाया हाजिर भाई के यहाँ आपको पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी कार्यक्रम लेन। किसान भाया लाया हाँ खेती बाड़ी जुड़ी नवी नवी जानकारियाँ, एक साथ नए नए विशेषज्ञों ने दी भेंटवार्ता और कार्यक्रम के में बाजार भाव मौसम और लोकगीत को आनंद भी आप लोग ले वाला। किसान भाया मई महीनों चल रही है और ये टाइम देखो घनी गर्मी जो है सावा घनी तेजी में पड़ रही है, तो अपने अपनी सेहत रो ध्यान रखना है, अपना स्वास्थ्य रो पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसान भाया ये टाइम किसान भाया ध्यान रखना है कि देखो गर्मी में बचाव वास्ते आप लोग ज़्यादा हूँ ज़्यादा पानी पीणो है। आप लोगों ने इमली को पानी पी सका हाँ, आप नींबू को पानी है, केरी को पानी है, इको आप प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कर लेना है ताकि यह जो गर्मी है इन्हों आप थोड़ा बचाव कर सका हाँ, जो लू है इन्हों भी बचाव वे जावे ऐसा। सूती कपड़ा इस्तेमाल ई टाइम आपने करना है किसान भाया, और किसान भाई खेत में बाहर जा रहा है तो रुमाल गमछा को प्रयोग भी कर लेना है किसान भाया, और ई टाइम थोड़ा सो अपने जो भोजन है ऐसा भी भोजन में थोड़ा बदलाव कराकनो है, हल्को भोजन आपने करना है। भोजन में मैंने किसान भाई फल ककड़ी खीरा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपा करना है और पेय पदार्थों को भी सेवन आपा ज़्यादा करना है ऐसा। अब बात करें किसान भाया मई महीना में जो भी कृषि कार्य ई टाइम आपने आप खेत में आपने करना है वे भी समय रहता था आप लोग पूरा कर लेवे। किसान भाया संयुक्त परिवार की बात करें किसान भाया तो देखो सर दो या दो अधिक पीढ़ियों से दादा दादी माता पिता चाचा चाची ताऊ ताई भाई बहन के सदस्य एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहे हैं वो संयुक्त परिवार कहलावे। किसान भाया अपने परिवार की जिम्मेदारी है कि हम सब की कि आप लोग भी संयुक्त परिवार में रहवा ताकि अपने विका को आशीर्वाद मिलते रहे है, और घर का जो दूसरा काम है भोजन भी एक ही स्थान पर आप लोग बना सका हाँ, खर्चों भी सामूहिक रूपों आप देवा हाँ, परिवार का सबसे बुजुर्ग लोगों को भी आपने आशीर्वाद मिले है। संकट या कठिन समय में भी परिवार के सदस्य एक साथ रहे ऐसा तो जिम्मे आपने खर्चों कम लगे है वह खर्चा में आपस में बांट लेवे है, तो आपने आपसी प्रेम सहयोग और आत्मीयता की भावनाओं बढ़ाव मिले है, तो आप लोग ने भी संयुक्त परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। किसान भाया अब चला हाँ लोकगीत की दुनिया में और सुन लाए चोकोसो लोकगीत।

0: वह सक्षम भया चोखो सो लोकगीत आपा हुणियो और कार्यक्रम के मैंने देखो मां हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी आपके वास्ते लेन हाजिर वहाँ आज एक जानकारी आपके वास्ते और लेन हाजिर यहाँ रेबीज बीमारी कारण लक्षण और उपचार आज जानकारी आपने दे रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर जांगिर साहब और आपको बातचीत की दी है सीताराम मावर साहब तो मिल बैठ सुना पाया चौकी सी जानकारी।
1: साथियों इस समय अपने साथ हैं डॉक्टर नवल किशोर जांगिड़ जो कि एमडी फिजिशियन हैं और आज इनसे जानकारी लेते हैं रेबीज बीमारी कारण लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि रेबीज बीमारी किस तरह की बीमारी होती है।
2: रेबीज बीमारी होती है एक संक्रमित बीमारी है जो रेबीज वायरस के द्वारा फैलती है। ये वायरस जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैन वायरस होते हैं जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बैट्स हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। जब ये जानवर किसी मनुष्य को या किसी अन्य जानवर को काटते हैं तो वो वायरस लार के द्वारा उस व्यक्ति काटने वाले व्यक्ति में मैमल्स में चला जाता है। फिर उसके बाद में इस बीमारी के लक्षण कम से कम 10 से 15 दिन के बाद में प्रकट होते हैं।
1: कितनी घातक यह बीमारी किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है?
2: ये बीमारी एक 100% फीटल है, इसमें बचने के चांस नहीं के बराबर होते हैं एक बार होने के बाद में। लेकिन यह बीमारी 100% प्रिवेंटेबल है, मतलब अपन इसको 100% बचा भी सकते हैं यदि टाइमली अपन इसका उपचार लेते हैं।
1: समय पर उपचार लेने पर इस बीमारी से बचाव आसानी से हो सकता है?
2: बिल्कुल हो सकता है।
1: कौन कौन से जानवर ऐसे हैं कुत्ते के अलावा जिसके काटने से यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है?
2: कुत्ते के अलावा जैसे अपने पालतू जानवर कैट्स हैं जो केनाइन जो एनिमल्स होते हैं,
1: बिल्ली हम कह सकते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्ली के द्वारा। और इसके अलावा जो चमगादड़ वगैरह अगर अपने यहाँ नहीं पाई जाती, चमगादड़ से भी फैलता है ये। 98% ये डॉग से होता है क्योंकि जनरली आदमी इन्हीं के कॉन्टेक्ट में रहता है अपने।
1: जैसे बिल्ली, चूहा, गिलहरी।
2: चूहा से हो सकता है, गिलहरी से भी हो सकता है, बंदर काटने से हो सकता है।
1: कोई भी जानवर जिसके केनाइन दांत होते हैं, हाँ, काटने वाले दांत, उनके काटने से यह बीमारी हो सकती है। क्या इस तरह के पशुओं की पहचान आसानी से की जा सकती है कि इस जानवर में, इस कुत्ते में, श्वान में, बिल्ली में, बंदर में यह बीमारी मौजूद हो सकती है, संभावना रहती है?
2: देखिए, जब जानवर काटता है तो उस टाइम इस बीमारी के लक्षण वायरस के शरीर में प्रवेश करने से कम 10 से 15 दिन, कभी महीना भर बाद में भी प्रकट होते हैं। तो अपन उस टाइम बता नहीं सकते कि इस जानवर में इस बीमारी के वायरस है या नहीं। जब यदि संभावना नहीं हो तो भी अपने को 100% फिटल मानते हुए इस बीमारी को प्रोफाइलेक्टिक जो वैक्सीनेशन है वो करवाना अनिवार्य है इसमें।
1: डॉक्टर साहब, डॉग है, बिल्ली है, जो लोग पालते हैं उनका तो पता रहता है, उसमें तो टीकाकरण वे लोग करवा सकते हैं, लेकिन जो गलियों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनका पता करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है?
2: देखो, ये मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। जनरली मेडिकल डिपार्टमेंट में भी यदि कोई प्रोफेशनल है वो भी पता नहीं कर सकते जब तक उसकी जांच नहीं हो जाए। तो हम इसको ये मान के चलते हैं यदि किसी वाइल्ड एनिमल ने जो नॉन वैक्सीनेटेड है उसने काटा है तो उसको 100% वैक्सीनेशन करवाना चाहिए पोस्ट एक्सपोजर।
1: जिस समय कोई, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, चूहा, गिलहरी, कोई भी जानवर काट ले किसी मनुष्य को, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए?
2: देखिए, यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी जानवर या किसी के द्वारा काट ले जाता है तो सबसे पहले उसको अपने घाव की सफाई करवानी चाहिए जो क्लीन वाटर होता है उसके साथ। आप जरूरी नहीं कि सोप लगाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट वाटर से उसको अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद में आप जितनी जल्दी हो सके स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और उसका पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन करवाइए।
1: डॉक्टर साहब, जब कभी इस बीमारी के लक्षण किसी जानवर में आते हैं क्या पहचान की जा सकती है?
2: हाँ, यदि किसी जानवर में इस बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं तो सबसे पहले जानवर में मुंह से लार निकलने लग जाती है। जानवर न्यूरोलॉजिकली थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, वो दौड़ना, इधर उधर भागना, क्योंकि ये बीमारी के जो वायरस होते हैं ये जानवर और मनुष्य के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं, तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है,
1: एक तरह से पगला जाता है जानवर। इस तरह का जानवर, चाहे कोई भी हो, किसी व्यक्ति को काट ले, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए?
2: यदि आप

0: लगता है कि कोई अपने को वाइल्ड एनिमल काट लेता है, तो सबसे पहले जहाँ पे आपके काटा है उस घाव की सफाई करनी जितनी जल्दी हो सके, भले ही आपके पास में सिंपल वाटर हो, उसे लगातार 5 से 10 मिनट सफाई करनी चाहिए, ताकि जो लोकली इनोडेड वायरस है वो क्लीन हो जाए एक बार और ब्लड के अंदर जाने से रुके।
1: और तुरंत अस्पताल दिखाना चाहिए।
0: और उसके बाद में आप जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक उपचार के लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए।
1: कई बार जानवर काटते हैं लेकिन खून नहीं निकल पाता, उस समय भी यही सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है।
0: जो रेबीज रेबीज के जो जानवर काटने के बाद में जो हम इसमें कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी फर्स्ट में वो आते हैं जिनमें जैसे मामूली मामूली स्क्रैच होती है, हल्का सा ब्लीडिंग होता है, तो हम इसको कैटेगरी फर्स्ट में रखते हैं, या उसकी जो लार है वो आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ गई हो तो हम उसको कैटेगरी फर्स्ट मानते हैं। कैटेगरी सेकेंड में वो आते हैं जिनके स्क्रैच हो गया और ब्लड ओजिंग हो गया, मतलब ब्लड अच्छा खासा आ चुका है, उसको कैटेगरी सेकेंड में रखते हैं। कैटेगरी थर्ड आती है जिसमें आपके बाइट हो गया और आपके अच्छा खासा घाव हो चुका है, उसको कैटेगरी थर्ड में डालते हैं। कैटेगरी फर्स्ट में हम वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन उसमें जैसे टोटल 5 डोज होती है इसकी, तो हम 3 डोज लगा के उस जानवर को यदि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हमको 14 डेज के लिए वेट करते हैं कि जानवर में कुछ रेबीज के लक्षण आ रहे कि नहीं आ रहे। यदि उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं तो फिर जो नेक्स्ट 2 इंजेक्शन होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना अप्रोक्रेटली 3 इंजेक्शन तो लगते ही। और यदि आप कैटेगरी सेकंड के थर्ड में आते हैं तो आपके पूरे 5 इंजेक्शन लगवाने चाहिए, पूरे 1 महीने में लगते हैं।
1: थोड़ी सी लापरवाही हमारी जान पर बन सकती है।
0: बिल्कुल, ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आपकी जान को यदि रेबीज वायरस है तो 100% मोर्टलिटी है, आपके बचने के चांस बहुत नहीं के बराबर है।
1: सर, क्या अभी भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं?
0: पहले के टाइम से अब इस मामले तकरीबन कम हो चुके हैं अपने इंडिया में एक्चुअली, क्योंकि इसमें अपने गवर्नमेंट के द्वारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो बहुत वाइड स्प्रेड है और हर जगह अवेलेबिलिटी है इस वैक्सीनेशन की, तो बहुत कम हो चुके हैं, बट अभी भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, क्योंकि लापरवाही कर लेते हैं कई बार, अपने को लगता है कि ये जानवर ने काटा है और ये इसके रेबीज इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये रेबीज है और उसको हो जाते हैं बाद में, क्योंकि एक बार होने के बाद में हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता। बीमारी एक बार हो चुकी है तो फिर हम उसको केवल इलाज प्रोटेक्शन करते हैं, बट उसमें बचने की संभावना बहुत नहीं के बराबर।
1: जानवर के काटने के कितने दिनों बाद तक हमें सावधान सावचेत रहने की आवश्यकता रहती है?
0: यदि आपको जानवर कोई आपका पालतू है तो आपको उस जानवर का 14 डेज तक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। जैसे मान लो कोई जानवर आपके भैंस वगैरह या किसी को भी काट लेता है तो उसका भी अपने ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, उसका मिल्क वगैरह आपको नहीं लेना पड़ता कम से कम 14 डेज तक।
1: 14 दिन तक हमें उस जानवर पर निगरानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी।
0: मिनिमम 14 डेज तो मैं बता रहा हूँ, बट जनरली कभी कभी 1 मंथ तक भी हो सकता है इसमें।
1: कई बार नई जगह पर हम जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक किसी कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूँकि बिल्ली को पाला नहीं जाता, यूं ही घूमती रहती है, चूहा है या गिलहरी है, इन पर निगरानी रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
0: उस कंडीशन में जब अपन जानवर की निगरानी नहीं कर सकते हैं तो आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते कि साहब उसमें वायरस है या नहीं है।
1: अगर किसी भी जानवर के काटने के बाद में वैक्सीनेशन करवाया जाता है, टीका लगवाया जाता है, सुरक्षित कितना हम हो जाते हैं?
0: 100%।
1: चाहे उसमें रेबीज के लक्षण मौजूद रहे हों,
0: यदि आपने टाइमली वैक्सीनेशन करवा लिया, शेड्यूल से वैक्सीनेशन करवाया है, तो आपका प्रोटेक्शन 100% है।
1: अब बात करते हैं इलाज की, तो टीका ही इसका इलाज है?
0: इसका टीका ही एक इलाज है।
1: ये किस तरह से लगाया जाता है?
0: इसमें शेड्यूल्स होते हैं, जैसे आपको जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसके 5 इंजेक्शन लगते हैं। पहले 0 डोज होती है जो 0 डे पे लगती है, फिर 3 डेज पे, फिर 7 डेज पे, और फिर 14 डेज पे, और लास्ट 28 डेज पे लगती है इसकी।
1: कोई भी डोज हमें मिस नहीं करना चाहिए?
0: बिल्कुल, आपके 5 वैक्सीनेशन डोज है, 5 डोज पूरी लगवानी चाहिए।
1: कई बार लापरवाही हो जाती है, डोज ठीक से काम ना करे, क्या व्यक्तियों में लक्षण रेबीज के फिर भी आ सकते हैं?
0: ऐसे मामले अभी तक तो देखो ऑब्जेक्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते। मान लो कि जो वैक्सीन

0: वैक्सीन है उसको जो स्टोर किया गया है, यदि उसकी एफिकेसी नहीं है तो उसमें चांस हो सकता है। बट जनरली आजकल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें जो जो वैक्सीन रखने की जगह है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है उसमें
1: ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है
0: के बराबर।
1: डॉक्टर साहब, लक्षण किस तरह से व्यक्ति में आते हैं जब कभी कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है?
0: जो रेबीज बीमारी है वो दो प्रकार के लक्षण टाइप से प्रकट होती है किसी व्यक्ति में, यदि मान लो रेबीज हुआ है। वन टाइप होता है जैसे फ्यूरियस टाइप को बोलते हैं, उसमें एग्जर्वेशन होता है। एग्जर्वेशन मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके कारण मनुष्य एग्रेवेटेड हो जाता है, गुस्सा करेगा, उसके मुंह से लार आएगी, वो फाइट करने की कोशिश करेगा, वो हर किसी को बाइट करने की कोशिश करेगा। जब जब धीरे धीरे लक्षण बढ़ते जाते हैं जब ब्रेन में इनके वायरस के, तो उसको पागल जैसी हरकतें करने लग जाएगा और हेलुसिनेशन आएगा उसमें। हेलुसिनेशन मतलब उसको लगेगा कि ये है, ये मेरे को मार रहा है, ये मेरे को काट रहा है, जो है ही नहीं चीज उसके बारे में वो सोचने लग जाता है दिमाग उसका। दूसरा टाइप होता है जिसको अपन कोमा टाइप होता है, जिसमें पेशेंट एग्रेशन नहीं करता बट वो कोमा में चला जाता है धीरे धीरे ब्रेन के शटडाउन के।
1: कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि पानी से डर लगने लगता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे जानवर हो।
0: उसमें जो बीमारी होती है ब्रेन से रिलेटेड होती है, जब व्यक्ति पानी में देखता है तो उसको परछाई दिखती है तो उसको हेलुसिनेशन आते हैं, फोबिया हो जाता है उसको, हम इसको वाटर फोबिया बोलते हैं। तो उसको लगता है कि कुछ जानवर है जो मेरे को खा रहा है, इसलिए वो उसको डरता है वाटर फोबिया से।
1: डॉक्टर साहब, जब कभी इस तरह की बाइट हो जाए, काट ले, जो देखभाल करते हैं परिवार के लोग व्यक्ति की या जानवरों की, किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है?
0: यदि किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपन घर पे नहीं रख सकते, उसके लिए बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट पे आइसोलेशन वार्ड होते हैं रेबीज वायरस वार्ड, वहाँ पे उसको रखा जाता है। वहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति की लार या वो किसी को बाइट नहीं कर ले, क्योंकि यदि वो व्यक्ति भी काट लेगा, यदि उसके लार से कॉन्टेक्ट आएगा तो जिसको काटेगा उसको भी रेबीज होने की संभावना हो जाती है। तो उसको आइसोलेट वार्ड में रखा जाता है। उसके जो बिहेवियर होते हैं, एग्जेशन बिहेवियर होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेडेटिव इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, और स्पाज्म होते हैं उसको रोकने के लिए एंटी स्पाज्म ड्रग दी जाती है और एंटी सीजर ड्रग दी जाती है ताकि वो एग्जेशन नहीं करे।
1: शुरुआती दौर में 14 दिन जो क्रिटिकल माने जाते हैं, इस दौरान किस तरह से व्यक्ति अपनी देखभाल करे या परिवार के लोग उसकी देखभाल करें?
0: यदि आपको रेबीज लगता है तो उसको घर पे तो रखना ही रिस्क के काम, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट ही कराना चाहिए। अपन ये नहीं कह सकते साहब उसको घर पे मैनेज कर लेंगे, इज नॉट पॉसिबल।
1: किसी जानवर के काटने के बाद में लक्षण आने से पहले टीके लगवा लिए जाते हैं, फिर कोई सावधानी विशेष तरह की रखने की आवश्यकता नहीं है?
0: नहीं, यदि आपने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है 0 डोज से 3 डेज 7 डेज, तो फिर उसमें आपको सावधानी की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे रूटीनली रहते हैं वो ध्यान रखना, बस उसका यह है कि जो अपने मुंह का लार है वो आपके कांटेक्ट में नहीं आए किसी दूसरे के।
1: जैसे ही बाइट होती है कितने समय बाद में पहला टीका लग जाता है?
0: जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आते हैं तुरंत सेम डे या उस टाइम फर्स्ट टीका लग जाता है उसके।
1: पहले ये टीके पेट में लगाए जाते थे, आजकल की व्यवस्थाएं कैसी हैं?
0: अभी ये डेल्टॉइड रीजन पे लगाते हैं अपन, हाथ की होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं। पहले वाले जो टीके आते थे वो लाइव होते थे, आजकल दूसरे टीके आते हैं जिनसे पेन वगैरह इतना नहीं होता है और सुरक्षित भी टीके हैं।
1: इस तरह के टीके लगवाने पर व्यक्ति को अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करना होता है?
0: नहीं, ये सब टीके गवर्नमेंट से फ्री है, आपको एक पैसा भी नहीं खर्च करना होता है इसमें।
1: डॉक्टर साहब, कई बार चमगादड़ चूहे रात को काटते हैं, अस्पताल दूर होता है और वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा समय लगता है।
0: यदि आपको लगता है कि जैसे मान लो आप दूर दराज में हैं, रात में काट लिया पता नहीं चले, तो सुबह जब जितने टाइम जल्दी हो सके आपको पता चले तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप जा सकते हैं। इसमें 24 आवर 2 डेज का रहता है, या जितनी जल्दी हो सके आपको टाइम मिले, आपको लगता है कि चलो आपने 2 दिन वेस्ट कर दिए या 3 दिन वेस्ट कर दिए, फिर भी हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस होता है उसका। जब तक लक्षण प्रकट नहीं होते उससे पहले तक वैक्सीनेशन होना चाहिए।
1: सबसे अच्छा काम तो यही है कि जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुँचे।
0: यस सर।
1: अच्छा, ये सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में भी मौजूद रहती होगी?
0: हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में सेंटर होते हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं टर्शियरी या सेकेंडरी लेवल के, वहाँ पर भी इनके सेंटर बनाए जाए।
1: डॉक्टर साहब, जागरूकता लाकर क्या इस रेबीज बीमारी से हम बचाव आसानी से कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: जिन पशुओं के माध्यम से जो पाले जाते हैं रेबीज हो सकता है, उनके लिए भी टीकाकरण मौजूद रहता है क्या? उनका टीका हर साल या दो साल में लगवाना होता है?
0: बिल्कुल, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो अपन पालतू जानवर होते हैं, उनका शेड्यूली वेटनरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें इनके टीके लगते हैं, और आपको इसका वैक्सीनेशन रेगुलर करवाना चाहिए। यदि आपका जानवर वैक्सीनेटेड है तो आपके रेबीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अंत में हमारे श्रोताओं को कोई सलाह देनी हो रेबीज रोग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोताओं से ये कहूँगा कि जो भी श्रोता अपने घर में या जानवर पालते हैं, तो सबसे पहले उस जानवर का वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाइए। ताकि दूसरा, आपने अपने बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जानवरों के काटने से रेबीज हो सकता है, तो इन जानवरों से काटने से बचने के उनको ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, इनको आइडिया नहीं होता कि साहब कुत्ता काटने से क्या होगा, तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इससे ये बीमारी हो सकती है, और उनसे पास जाने से उन पर क्या सावधानी रखनी चाहिए वो हमेशा समझानी चाहिए। दूसरा कि आपको यदि कोई जानवर काट लेता है तो उसको लापरवाही में कभी भी नहीं लेना चाहिए। कई बार गांव में होता है कि साहब काट लिया कोई बात नहीं है, अपन को ठीक हो जाएगा ऐसे ही, और प्राथमिक उपचार करके कुछ भी लगा के वो रहते हैं, नहीं। तो इसमें आपको 100% आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, बाकायदा वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हो या नहीं हो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक बार हो गई तो आपकी मोर्टेलिटी 100% है।
1: यूँ कह सकते हैं, यदि लक्षण आप में आ गए काटने के बाद में रेबीज बीमारी के, तो बचना मुश्किल हो जाता है,
0: नामुमकिन सा है सर।
1: तो हम ये चाहते हैं कि हमारा श्रोता जागरूक हो और रेबीज बीमारी के प्रति सावधान रहे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथियों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: वसक्सन भाई, चौकी सी जानकारी अपने डॉक्टर साहब दीदी ऐसा, और बचाला लोकगीत की दुनिया में सुनना एक चौकसो लोकगीत।

सक्षम है चौको से लोग और जानकारी है मिट्टी की जात तो किसान में फसल बोव के लिए आपने मिट्टी की जात जरूर करा लेनी चाहिए ऐसा क्योंकि इमें देखो सर आपने उपज में कतरी कही आपने उर्वरक की जरूरत पड़े है तो मिट्टी की जांच आप लोगों ने जरूर करा लेनी चाहिए ऐसा। और ज्यादा से ज्यादा हमने कार्यालय कृषि उपज मंडी निम्बाड़ा का भाव बता दू सा गेहूँ का भाव रहा है 2400 रुपये प्रति क्विंटल लेन 2761 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का पीली का भाव रहा है 1700 रुपये प्रति क्विंटल लेन 2150 रुपये प्रति क्विंटल। जौ का भाव रहा है 2251 रुपये प्रति क्विंटल लेन 2450 रुपये प्रति क्विंटल। और सोयाबीन का भाव रहा है ऐसा 5800 रुपये लेन 7451 रुपया प्रति क्विंटल। ज्यादा ज्यादा आपने आज के मौसम की जानकारी दे दू सा आज को अधिकतम मौसम रही 43 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रही 28 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता है 13% और हवारी गति है आज 24 किलोमीटर प्रति घंटा। काले अधिकतम रही किसान भाई मौसम 43 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रही 24 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता है 13% हवा की गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। किसान भाई अभी टाइम दे रहे हो आप लोगों इजाजत ले तो दो मिनट इजाजत घना घना राम राम।

खेती किसानी। अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग सभी श्रोताओं को। मैं ऋतु, आपकी रेडियो साथी, हाजिर हूँ लेकर थीम म्यूजिक पर आधारित आज का ये फिल्म संगीत। साथियों, जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई हमें बिना शर्त अपनाता है, संभालता है और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, तो वह है हमारा परिवार। परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, संस्कार और सुरक्षा की वो छांव है जहां इंसान खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

साथियों, रिश्ते पैसों से नहीं, समय और अपनेपन से मजबूत होते हैं। छोटे बड़े उत्सव, बर्थडे पार्टीज, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, शादी जैसा मौका, या कभी कुछ कारण ना होने पर भी एक साथ होना और परिवार के साथ मौज मस्ती करना वाकई रिश्तों में ऑक्सीजन का काम कर देता है। तो फिर हो जाइए तैयार और कीजिए फन इस सॉन्ग के साथ।

जी हाँ साथियों, एक दूसरे के टच में परिवार वालों को ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ और गम तो परिवार में चलते ही रहते हैं। और साथ ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा परिवार, और जहाँ खासकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हो, उनकी छांव हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर चाहे छोटी मोटी अनबन हो गई हो, कभी किसी से मनमुटाव हो गया हो, या किसी कारण से कोई भी दूरी बन गई हो, आखिर अपने तो अपने होते हैं, वो किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते।

आसान हो जाती है। फिर चाहे छोटी मोटी अनबन हो गई हो, कभी किसी से मन मुटाव हो गया हो, या किसी कारण से कोई भी दूरी बन गई हो, आखिर अपने तो अपने होते हैं, वो किसी भी स्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं।

परिवार ही सभी को सभी की पहली पाठशाला होता है, जहां हम बोलना, चलना, खाना और फिर जिंदगी की शुरुआत करना सीखते हैं। और आप सबको पता है ना साथियों कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ये होता है हमारी माँ का। और माँ के साथ पिता, जो कि हमारे सर पे छत की तरह होते हैं, हर मुसीबत में वो पहले हमारे सामने आ जाते हैं। तो अगर माता पिता का साथ हमारे साथ हो तो ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काम है कि वो हम ना कर पाएँ, या फिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जो हमें घबराने पर, हमें रुक जाने पर मजबूर कर दे? क्योंकि माता पिता चाहे जो भी हो, जिस भी स्थिति में हो, हमेशा अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी रुकें। सचिए दोस्तों, धरती पे अगर कोई है जो कि हमें अनकंडीशनल लव करता है, भगवान की तरह हमें सब कुछ देता रहता है, तो वो है हमारे माता पिता।

साथियों, परिवार हमें सही गलत की पहचान सिखाता है, संस्कार देता है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी हमें परिवार की छांव में ही मिलते हैं। कहते हैं कि

साथियों, सच में परिवार की जो छाया होती है ना, वो एक वट वृक्ष की तरह होती है। परिवार में सारे रिश्ते अपनी बड़ी अहमियत रखते हैं। माता पिता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, भाई बहनों का आपस में, और फिर रिश्ते जो कि आज के समय में थोड़े सीमित होते जा रहे हैं। एक समय था, हमें याद है कि जब हम छोटे बच्चे होते थे तो गर्मी की छुट्टियां आती थी, बड़ा इंतज़ार रहता था कि हमारे कज़िन हमें मिलेंगे, हम नानी के घर जाएंगे, वहाँ मामा के बच्चों से, बुआ के बच्चों से हम मिलेंगे, और फिर ढेर सारी यादें हम इकट्ठी कर लेते थे। तो ये परिवार का ही तो हिस्सा है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम ऐसे रिश्तों को धीरे धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, वो यादें हैं जो बचपन हमें फिर से जिंदा कर देती है हमारा, और हमें फिर से बचपन वाली वो एनर्जी, वो सकारात्मकता हमें ले आती है, और हम जीवन के चाहे कितने भी मुश्किल पल हों उनको भूल जाते हैं। तो अपने कजिन से जो भी आपकी बचपन की यादें रही हैं उनको ताज़ा करते रहिए, मिलते रहिए, क्योंकि हमारी यादों की अलमारी में कुछ तो सामान होना चाहिए ना, कि हम कभी फुर्सत के पलों में बैठें तो उन यादों को याद कर सकें और गुदगुदा सकें।

बिताने के लिए वक्त। लेकिन हमें भूलना नहीं है, क्योंकि ये परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, और सॉरी कहने में भी हमें कई बार तो बड़ी दिक्कत होती है। हमें लगता है कि मैं क्यों पहले सॉरी बोलूँ। हम रूठ जाते हैं और हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमें कोई और आकर के मना ले। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कब आप इसमें इतने उलझते जाएंगे कि ये सफ़र कब इतना आगे बढ़ गया, कब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने को आ गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, आप अपनों के साथ खूब जी भर के रहिए, खूब सारी यादें इकट्ठी कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। और जो अपने आप से रूठ गए हैं ना, उनको मनाने के लिए बिल्कुल भी देरी किए बिना आप सब कुछ भूल करके ये याद रखिए कि है तो वो आपके अपने, बोल दीजिए सॉरी, मना लीजिए रूठों को, और खूब आराम से अपने परिवार की इम्पोर्टेंस समझते हुए ज़िंदगी को जिए।

साथियों, सच में यादें इकट्ठी करने में बड़ा वक्त लगता है। उसके लिए हमें अपनों के साथ वक्त बिताना पड़ता है, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त ही तो नहीं है किसी के पास। फिर चाहे दोस्तों के लिए वक्त हो या फिर हो परिवार के साथ।

तो साथियों, हौसला मत हारिए, अपने जो हैं उनको भी मना करके रखिए, अपने साथ रखिए और देखिए ज़िंदगी के सफ़र का कितना मज़ा आता है। साथियों, फिल्म संगीत में जो कि आज आधारित था थीम म्यूज़िक पर, यहीं तक दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त ऋतु को। FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं और श्रोताओं, अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम लोक झनकार का,

लोक जनकार कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। साथियों, राजस्थान की मिट्टी में इतिहास बोलता है और संस्कृति मुस्कुराती है। यहाँ के मंदिरों की घंटियां केवल ध्वनि नहीं, आस्था की पहचान है। राजस्थान की रेत केवल मरुस्थल नहीं, यह वीरता, भक्ति और परंपराओं की अमर कहानी है।

साथियों, राजस्थान की आन बान, इसकी संस्कृति न्यारी है। हर रंग में बसी यहाँ वीरों की फुलवारी है। मिट्टी की खुशबू कहती है गर्व से हर बार, राजस्थान है भारत माता के माथे का श्रृंगार।

सच है साथियों, जब बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति की तो हम गौरव से भरपूर हो जाते हैं। और साथियों, संस्कृति की बात करें तो घूमर का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता है।

घूमर सिर्फ नृत्य नहीं, राजस्थान की पहचान है। हर घूमती चुनरी में बसी संस्कृति की शान है। ढोल की ताल पर जब कदम थिरक जाते हैं, मरुधरा के रंग दिलों में उतर जाते हैं।

बीजल सी चंचल लुआ, नागण सी खूंखार, पानी सु पतली घणी, पैनी धार कटार। जी हाँ साथियों, आजकल हवा का, आजकल के तापमान का ऐसा ही कुछ हाल है। ये जो तीखी तेज धूप है और ऐसी जो लू चल रही है, ये सच में कटार की तरह हम सबको चुभ रही है, क्योंकि मौसम है गर्मी का और गर्मी के साथ इस बार तापमान कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हम इंसान पेड़ पौधे लगाना तो जैसे

भूल ही गए हैं। हमारे पुरखों ने कितने पेड़ लगाए, कितनी उनकी पूजा की, कितना उनको सराहा, कितना उनको सहेजा, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं हम सभी जानते हैं। और ऐसे में हमें तो गर्मी लगती है तो हम घर में बैठ जाते हैं, हम कूलर पंखा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन पक्षियों का क्या, ज़रा उनका भी ख्याल रखिए। ऐसी गर्मी में उनके लिए भी कहीं ना कहीं पेड़ों की टहनियों पर, कहीं घर की छत पर, कहीं आंगन में उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। और देखिए, ऐसे में लाइट चली जाएगी तो ये पेड़ ही है ना जो हमें सुकून देंगे, हवा देंगे। तो गर्मी के दिन है, आनंद लीजिए इस संगीत का भी, और अपने जीवन में भी कुछ औरों के लिए भी कीजिए, कुछ अपने लिए भी।

सखियों, इस धूप की वजह से बच्चे परेशान हैं और उनकी होने वाली है स्कूलों से छुट्टियां। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये जो धूप पड़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो सबको चिंता होती है कि अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए उनकी हो रही है गर्मी की छुट्टियां, और ऐसी गर्मी में सबको मन करता है कि कहीं घूम आए। तो ऐसे में खासकर महिलाओं का मन भी करता है अपने बच्चों के साथ कि अब इनकी छुट्टियां हो गई है, हमें भी अपने मायके जाना है। तो हर स्त्री के मन में लगभग आजकल इन दिनों में यही बात आ रही होगी और कि हम कब अपने पियर जाएंगे, और वो अपने परिवार में कहीं ना कहीं इस तरह की बात कर रही होगी। आइए सुनवाते हैं आपको ऐसा ही एक लोकगीत।

तो साथियों देखिए, हमने आज चर्चा की राजस्थान की संस्कृति पर, घूमर पर, और अब बारी आ गई है पीहर जाने की। तो कईयों के घर में छोटी मोटी नोक झोंक भी होने लगी है, पीहर जाना है। तो सभी आप अपना ख्याल रखिए। आज के लोक झनकार कार्यक्रम में इतना ही।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम लोक झनकार एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आइए सुनते हैं पहली भक्ति रचना। स्वर लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी के हैं।

लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी के स्वर थे और इसमें आप सुन रहे थे भक्ति रचना। आइए बढ़ते हैं अगली रचना की ओर, जिसे स्वर दिया है अनूप जलोटा ने।

जगजीत सिंह के स्वर में आप सुन रहे थे भक्ति रचना, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम होता है यहीं संपन्न। FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के

0: लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लॉ, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय

0: में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना,

0: इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet,

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं थे।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं, पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी

म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी लेकिन ए आर रहमान के पास नहीं गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए आर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

सलमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

0: दीनदयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है।
1: भाई तेरा हुल सकता है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा।

दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बेनीदयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचाकर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनीदयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो एआर रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल

और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने चाहत

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।